0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के अदीति रामजा और प्रोड्यूसर अब मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और अब मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

याद दिलाते कि आप रेडियो आवाज़ी ताजिकी हिंदी भाग को सुन रहे हैं। ताजिकिस्तान और भारत के दोस्ती के उदाहरण में लोगों के बीच साहित्य के महत्व के बारे में इस समय बात करेंगे। लोगों के बीच संबंधों को आकार देने में साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है। वास्तविक साहित्य कई तरह से लोगों और संस्कृतियों को एक साथ लाता है। समाचार पत्र और पत्रिका के लेख, साथ ही अन्य जानकारी, चाहे वे कुछ भी हो, यहाँ तक कि दोस्ती, आपसी संबंधों और सहायों के नारे और आह्वान भी लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकते हैं और कई सदियों तक लोगों का प्यार और सहानुभूति जीत नहीं सकते हैं। हालांकि एक साहित्यिक कार्य और अन्य भाषाओं में किताबों के अनुवाद एक लंबा जीवन जीते है, विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले विभिन्न लोगों को एक साथ लाने में योगदान करता है। सन 1947 के मार्च में प्रसिद्ध ताजिक कवि मिर्जो तुर्सुनजोदा ने सोवियत प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में पहली बार भारत का दौरा किया था। ये भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर था। कवि बड़े प्रभाव में भारत से लौटा। उन्होंने 13 कविताओं में अपनी राय व्यक्त की, जो इंजन बैलत शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई। कविताओं के इस चक्र में रिटर्न, इंजन बैलत, वेस्टर्न गेस, तारा चांद्री, ताजमहल, हैंगिंग गार्डन, गंगा नदी, माई टोस्ट, ट्रेवल ऑफ इंडिया जैसी कविताएं शामिल है। इन कविताओं के प्रकाशन के साथ ही मिर्जो तुर्सुनजोदा की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। कविताएं एक मानवतावादी कवि के प्रतिबिंब का फल थी, जो लोगों के बीच शांति और सहायों के लिए एक अथक सेनानी थी। बहुत ही कम समय में उनका रूसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, स्पेनिश, पोलिश, चीनी, हिंदी, जॉर्जियाई, उज्बेक, कजाक और दुनिया के अन्य भाषाओं में सोवियत संघ में अनुवाद किया गया। भारतीय गाथा गीत के बदौलत दुनिया भर में ताजिक कवि की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, इसके अद्भुत प्रतिभाशाली लोग और इसकी शानदार कला ताजिक लोगों के और भी करीब और प्रिय हो गए हैं।

यदि आप ही 20वीं शताब्दी के 20वें दशक में भी ताजिक कवियों ने भारतीय विषय की ओर ध्यान दिया लेकिन केवल मिर्ज़ा तुर्सुनज़ादा की शक्तिशाली कलम ही वो दे सकी जो उस समय के सरल और उच्च शिक्षित ताजिक पाठक भारत के बारे में जानना चाहते थे। पिछले शताब्दी के 50 के दशक से हमारे देश में भारतीय लेखकों की रचनाओं का गहन अनुवाद किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वर्षों में अनुवाद केवल रूसी भाषा के माध्यम से किए जाते थे क्योंकि ताजिकिस्तान में अभी तक अपने स्थानीय अनुवादक नहीं थे जो भारतीय भाषाओं को जानते थे कि मूल भाषा से सीधे अनुवाद कर सकते।

राष्ट्रीय साहित्य में आपने हमवतन लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिर्फ 30 साल सन 1950 से 1980 तक भारतीय लेखकों द्वारा 300 से अधिक कहानियों उपन्यासों परियों की कहानियों और कविताओं का रूसी से ताजिक में अनुवाद किया गया। निसंदेह सबसे पहले कलात्मक शब्द के प्रतिभाशाली और व्यापक रूप से ज्ञात स्वामी के सर्वोत्तम कार्यों का रूसी में अनुवाद किया जाता था और फिर युवा और निश्चित रूप से भारत के कवियों और लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया जाता था। ताजिक अनुवादकों ने भी इस परंपरा को संरक्षित रखा और इस स्मृत शस्त्रागार से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अवसर मिला। पचास और साठ के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मोहन सिंह और ख्वाजा अहमद अब्बास की रचनाओं का सर्वाधिक अनुवाद हुआ। उपयुक्त लेखकों में रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद की रचनाएं हमारे देश में विशेष रूप से लोकप्रिय थी और अभी भी है। टैगोर ने अपने जीवन काल के दौरान अपनी मातृभूमि और विदेश दोनों में अविश्वसनीय लोकप्रियता प्राप्त किया। सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की शताब्दी ताजिकिस्तान सहित पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाई गई। महान भारतीय कवि, लेखक, विचारक और कलाकार, पूरे पूर्व में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे देश में पहले से ही प्रसिद्ध था। सन 1940 की शुरुआत में टैगोर की कहानी वन हैप्पी नाइट ताजिक भाषा में लेनिन्स वे पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में उनकी अन्य रचनाओं का अनुवाद किया गया। ताजिकिस्तान में सन 1961 को रविंद्रनाथ टैगोर का वर्ष कहा जा सकता है। लगभग एक साल तक टैगोर की रचनाएं और उनके बारे में लेख हमारे देश में प्रकाशित होते रहे। ये इस वर्ष था कि ताजिक पाठक अपनी मूल भाषा में काबुलवाला, मोहमाया, नोटबुक, प्रतिशोध, संदेह जैसे आदि लेखक की कहानियों से परिचित हुए। हालांकि सबसे बड़ी घटना ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक जीवन सबसे प्रसिद्ध टैगोर के उपन्यास गोरा का अनुवाद था, जहां पाठक को सबसे पहले औपनिवेशिक भारत में भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक बालिदान का ताजिक भाषा में अनुवाद और प्रकाशन किया गया था। सन 2006 में टैगोर की 19 कहानियों का पहली बार हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया गया, जिनमें जाज, वन नाइट, दालिया, हेमंती, बिग सिस्टर, स्ट्रेंजर, सजा और अन्य शामिल है। अनुवाद हबीबुल रजाबफ, उस्मानफ, रहमतुल्लोयेवा, सोलियेवा के साथ मिलकर किया गया था। इस संग्रह की प्रस्तुति दुशंबे के अलावा हमारे राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की राजकीय यात्रा के दौरान 7 अगस्त 2006 को दिल्ली शहर में भी हुई थी। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक के प्रस्तुतिकरण समारोह में उपस्थित थे। ये भारतीय प्रतिभा के प्रति आध्यात्मिक सम्मान का एक और प्रमाण है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़कर हम भारत के बारे में, इसके मेहनती और शांतिप्रिय लोगों के बारे में बहुत सी मूल्यवान और दिलचस्प जानकारी लेते हैं। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत और ताजिकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक सहयोग का एक नया युग शुरू हो गया है। बेशक ये एक विशेष चर्चा का विषय है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के साथ भारतीय साहित्य के अध्ययन और अनुवाद के लिए गुणात्मक रूप से नई संभावनाएं जुड़ी हुई है। सन 2002 में नई सदी की शुरुआत में ताजिक भाषा में आधुनिक भारतीय लेखकों द्वारा सखू कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था, जिसमें 14 प्रसिद्ध लेखकों की 18 कहानियां शामिल थी, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में लिख रही थी। भारतीय लेखकों की कहानियों का मूल भाषा से सीधे अनुवाद करने का ये पहला प्रयास था। सन 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के सम्मान में हबीबुल रजाबफ ने उनके कविता संग्रह ए ड्रॉप ऑफ रेन का हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया। इस संग्रह की बदौलत पता चला कि श्री वाजपेयी न केवल एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे। भारतीय पाठक सात से अधिक वर्षों से उत्कृष्ट ताजिक लेखक

सरदीन आईनी के कार्यों से परिचित है और ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक वैज्ञानिक अनुवादक और यात्री राहुल संक्रित्यान के बदौलत है जिन्होंने पिछले शताब्दी के 40वें दशक में मध्य एशिया के लोगों के साहित्य और इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया था। समकालीन ताजिक साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। सरदीन आईनी मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा जलाल इक्रोमी सोचिम उलुगज़ोदा और रहीम जलील की रचनाओं से परिचित होने के बाद उन्होंने सरदीन आईनी की रचनाओं का अनुवाद करना शुरू किया और सन 1948 में उनकी दो पुस्तकें ओदिना और उपन्यास दोखुंदा भारत में हिंदी में प्रकाशित हुई। उल्लेखनीय है कि राहुल संक्रित्यान सरदीन आईनी को मध्य एशिया का प्रेमचंद मानते हैं। आईनी के उपन्यास दोखुंदा और गुलामान न केवल कलात्मक है बल्कि ऐतिहासिक भी है। सोवियत संघ के दौरान मध्य एशिया से परिचित होने के लिए बेशक कई स्रोत और तरीके हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए बिना किसी अतिशयोक्ति के सरदीन आईनी के कार्य सबसे उपयुक्त है। पुस्तक के प्रकाशन ने भी यही विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार विभिन्न लोगों के मेल मिलाप के क्षेत्र में सभी नवाचारों के बावजूद साहित्य हमारी राय में लोगों के बीच आपसी समाज का सबसे विश्वसनीय साधन बना हुआ है। प्यारे श्रोताओं, अलग देशों के लोगों को एक साथ लाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ाने में साहित्य के महत्व के बारे में ताजिकिस्तान और भारत के साहित्य के उदाहरण में हमारी टिप्पणी आपने सुना। आप एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

0: आवाज इत्याजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज इत्याजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है।

हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प बयान, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के एडिटर रामजा और प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है। प्यारे सुनने वालों, याद दिलाना कि आप सुन रहे रेडियो आवाज़ ताजिक और अभी हमने तय किया कि आपको पानी की समस्याओं पर तजकिस्तान के पहलों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। कल तजकिस्तान की राजधानी दुशांबे में सतत विकास के लिए जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय कार्यदिशक पर चौथे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभ आरंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्रीय नेता मामाहिम अली रहमान ने भाग लिया। सम्मेलन में दुनिया के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये सम्मेलन जल संबंधी वैश्विक पहलुओं को आगे बढ़ाने में तजकिस्तान की निरंतर भूमिका का हिस्सा माना जा रहा है और इससे जल, जलवायु तथा सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति मामाहिम अली रहमान ने अपने संबोधन में कहा है कि जल से जुड़े मुद्दे आज वैश्विक समुदाय के सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के एक प्रतिनिधि ने तजकिस्तान की पहल के बारे में और इस सम्मेलन के बारे में इस प्रकार कहा है।
1: मेरा नाम फराज सईद है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैं पत्रकार हूँ पाकिस्तान का और मैं उनकी रियासती मीडिया पाकिस्तान टीवी डिजिटल से मेरा ताल्लुक है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस एक शानदार इवेंट है। कल इनॉग्रल इवेंट नेशनल लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर अंडर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो यूएन की थी, वो उन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद आपके जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेशन को इनॉग्रेट किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई। उसके बाद फिर आज हम इस पैलेस में मौजूद हैं, जो शानदार है, खूबसूरत है। और ये कॉन्फ्रेंस बहुत कमाल के तरीके से इसको जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ताजिक प्रेसिडेंट ने बहुत अरसा लगाया है इस ताजिकिस्तान को इस पोजीशन में लाने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि 90% से ज़्यादा ताजिकिस्तान के पास माउंटेंस हैं, फिर ग्लेशियर्स हैं। तो उन्होंने उस रिसोर्स को एज अ स्ट्रेंथ बनाया और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो दुनिया के अंदर इस रिसोर्स की हिफाजत के चैंपियन बनेंगे। उसके बाद बिकॉज उन्होंने दुनिया में वाटर डिप्लोमेसी को इतना हाईलाइट किया कि 2018, 2022, 2024 और आप 2026 में ये चौथी कॉन्फ्रेंस है जो मुनक्किद की गई है, और 2028 में गालिबन दोबारा जो इंटर यूएन की जो कॉन्फ्रेंस होगी वाटर के ऊपर, वो यहाँ होगी। तो आई थिंक जो ताजिक प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, वो मिलियंस ऑफ लाइव्स जो हैं वो एट स्टेक हैं दुनिया में। आपको पता है क्लाइमेट क्राइसिस हैं, फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, उनको अगर इस ताजिक प्रेसिडेंट इन कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए कोई सोल्यूशन दुनिया को अगर ला सकते हैं, तो आई थिंक मिलियंस लाइव्स वो सेव कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि तजकिस्तान जो विशाल जल संसाधनों वाला देश है, जल और जलवायु संबंधी वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तजकिस्तान के पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल और ग्लेशियर संरक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में हजारों ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं, जिससे भविष्य में पीने योग्य पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। तजकिस्तान जैसे पर्वतीय देश भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीर रूप से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य एशिया के अधिकांश जल स्रोत तजकिस्तान के ग्लेशियरों से निकलते हैं। सम्मेलन में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग, हरे जल विद्युत ऊर्जा के विकास, प्राकृतिक आपदाओं को रोकथाम, सूखे के के जोखिम को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना संभव नहीं है। सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय जल कूटनीति भी रहा। विशेषज्ञों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जल को सहयोग और एकता का माध्यम बनाना चाहिए, न कि संघर्ष का कारण। इस संदर्भ में तजिकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पहलों को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन के दौरान जल अवसंरचना में विशेष बढ़ाने, जल प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच में सुधार तथा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ग्लेशियर संरक्षण के मुद्दे को विशेष प्राथमिकता दी गई। प्रतिभागियों ने कहा कि ग्लेशियर मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है और उनका संरक्षण पानी वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में वैश्विक समुदाय से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन के तहत युवा और महिला मंच, वैज्ञानिक बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और समाज को जल संबंधी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुशांबे में आयोजित ये चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके परिणाम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकते है। और अंत में हमारे साक्षात्कार पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रतिनिधि ने तजिकिस्तान और दुशांबे की खूबसूरती के बारे में इस प्रकार कहा है।
1: दुशांबे इस कदर खूबसूरत शहर है कि देयर इज नो पैरेलल टू इट। इमारात, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, सफाई और खूबसूरती और ओपननेस। जैसे हम कल एक म्यूजियम गए, एक और आई थिंक कोई नौरूज पैलेस था, वहाँ गए, वहाँ बच्चे गा रहे थे, नाच रहे थे। इतना खुला माहौल है यहाँ का कि मतलब इट्स ब्यूटीफुल कि हर बंदा सेलिब्रेट करे लाइफ को। डांसिस लाइफ सेलिब्रेट हो रही है, डेवलपमेंट सेलिब्रेट हो रही है, एंड वी सी हैप्पीनेस एवरीवेयर। और जब से हम भी आई थिंक दो दिन हो गए हमें दुशंबे आए हुए, खूबसूरती एब्सोल्यूट दिल खुश हो जाता है। जब भी हम किसी भी हॉल से बाहर निकलते हैं, दुशंबे का नज़ारा करते हैं, तो हर एक नज़ारा दुशंबे का जो है ना, वो मुनफरद है। हर बंदा इतनी प्यार मोहब्बत से, एहतराम से हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हमें खानों पे लेके जा, तो ये बहुत खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखें, वो पर्शियन डिसेंट है, उर्दू का भी पर्शियन डिसेंट है, और उसके बाद वो उसको लश्करी, उर्दू को कहते हैं लश्करी जुबान, तो वो बिकॉज वो ट्रैवल होती होती पाकिस्तान तक पहुंच गई। और पर देखें ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारा जो बॉर्डर, हमारे पास हमारा बॉर्डर नहीं है, बट हम अफगानिस्तान के बीच में एक वखान, एक पट्टी है, वो आई थिंक मैक्सिमम 10 किलोमीटर की है। अगर हम वहाँ से ब्रिज बना लें तो हम बॉर्डर स्टेट्स भी बन सकते हैं। तो जाहिर है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान आर लाइक ब्रदर्स, दे फील फॉर ईच अदर। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करें तो ताजिकिस्तान भाई हैं, अगर पाकिस्तान ताजिकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान भाई हैं। तो आई थिंक जो मोहब्बत और बॉन्ड है दोनों मुल्कों के अंदर, लोगों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, वो हमेशा से लाजवाब रहा है।

यादिलाते कि आप रेडियो आवाजी ताजिकी हिंदी भाग को सुन रहे हैं। ताजिकिस्तान और भारत के दोस्ती के उदाहरण में लोगों के बीच साहित्य के महत्व के बारे में इस समय बात करेंगे। लोगों के बीच संबंधों को आकार देने में साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है। वास्तविक साहित्य कई तरह से लोगों और संस्कृतियों को एक साथ लाता है। समाचार पत्र और पत्रिका के लेख, साथ ही अन्य जानकारी, चाहे वे कुछ भी हो, यहाँ तक कि दोस्ती, आपसी संबंधों और सहायों के नारे और आह्वान भी लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकते हैं और कई सदियों तक लोगों का प्यार और सहानुभूति जीत नहीं सकते है। हालांकि एक साहित्यिक कार्य और अन्य भाषाओं में किताबों के अनुवाद एक लंबा जीवन जीते हैं, विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले विभिन्न लोगों को एक साथ लाने में योगदान करता है। सन 1947 के मार्च में प्रसिद्ध ताजिक कवि मिर्जो तुर्सुनजोदा ने सोवियत प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में पहली बार भारत का दौरा किया था। ये भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर था। कवि बड़े प्रभाव में भारत से लौटा। उन्होंने 13 कविताओं में अपनी राय व्यक्त की जो इंजन बैलत शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई। कविताओं के इस चक्र में रिटर्न, इंजन बैलत, वेस्टर्न गेस, तारा चांद्री, ताजमहल, हैंगिंग गार्डन, गंगा नदी, माई टोस्ट, ट्रेवल ऑफ इंडिया जैसी कविताएं शामिल है। इन कविताओं के प्रकाशन के साथ ही मिर्जो तुर्सुनजोदा की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। कविताएं एक मानवतावादी कवि के प्रतिबिंब का फल थी जो लोगों के बीच शांति और सहायों के लिए एक अथक सेनानी थी। बहुत ही कम समय में उनका रूसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, स्पेनिश, पोलिश, चीनी, हिंदी, जॉर्जियाई, उज्बेक, कजाक और दुनिया के अन्य भाषाओं में सोवियत संघ में अनुवाद किया गया। भारतीय गाथा गीत के बदौलत दुनिया भर में ताजिक कवि की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, इसके अद्भुत प्रतिभाशाली लोग और इसकी शानदार कला ताजिक लोगों के और भी करीब और प्रिय हो गए हैं।

यद्यपि 20वीं शताब्दी के 20वें दशक में भी ताजिक कवियों ने भारतीय विषय की ओर ध्यान दिया, लेकिन केवल मिर्ज़ा तुर्सुनज़ादा की शक्तिशाली कलम ही वो दे सकी जो उस समय के सरल और उच्च शिक्षित ताजिक पाठक भारत के बारे में जानना चाहते थे। पिछले शताब्दी के 50 के दशक से हमारे देश में भारतीय लेखकों की रचनाओं का गहन अनुवाद किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वर्षों में अनुवाद केवल रूसी भाषा के माध्यम से किए जाते थे, क्योंकि ताजिकिस्तान में अभी तक अपने स्थानीय अनुवादक नहीं थे जो भारतीय भाषाओं को जानते थे कि मूल भाषा से सीधे अनुवाद कर सके। इस प्रकार रूसी भाषा ने भारत और ताजिक भाषाओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऐसी स्थिति में ऐसे अनुवादकों की आवश्यकता थी जो अधिकतम सटीकता और चमक के साथ कलात्मक छवियों, विचारों और कला के काम की अन्य विशेषताओं को व्यक्त कर सके। उच्च योग्यता ताजिक अनुवादक जैसे कि शरीफ शराफ, मुलोखानदव, अब्दुल जलील वसीदजोदा, हसन इरफोन, रहीम होशीम, फुलोत तोलिस, हिकमत रहमत और अन्य ने भारत में अपनी समृद्ध और बहुराष्ट्रीय साहित्य में अपने हमवतन लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिर्फ 30 साल सन 1950 से 1980 तक भारतीय लेखकों द्वारा 300 से अधिक कहानियों, उपन्यासों, परियों की कहानियों और कविताओं का रूसी से ताजिक में अनुवाद किया गया। निसंदेह सबसे पहले कलात्मक शब्द के प्रतिभाशाली और व्यापक रूप से ज्ञात स्वामी के सर्वोत्तम कार्यों का रूसी में अनुवाद किया जाता था और फिर युवा और निश्चित रूप से भारत के कवियों और लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया जाता था। ताजिक अनुवादकों ने भी इस परंपरा को संरक्षित रखा और इस स्मृत शस्त्रागार से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अवसर मिला। पचास और साठ के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मोहन सिंह और ख्वाजा अहमद अब्बास की रचनाओं का सर्वाधिक अनुवाद हुआ। उपयुक्त लेखकों में रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद की रचनाएं हमारे देश में विशेष रूप से लोकप्रिय थी और अभी भी है। टैगोर ने अपने जीवन काल के दौरान अपनी मातृभूमि और विदेश दोनों में अविश्वसनीय लोकप्रियता प्राप्त किया। सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की शताब्दी ताजिकिस्तान सहित पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाई गई। महान भारतीय कवि, लेखक, विचारक और कलाकार, पूरे पूर्व में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे देश में पहले से ही प्रसिद्ध था। सन 1940 की शुरुआत में टैगोर की कहानी वन हैप्पी नाइट ताजिक भाषा में लेनिन्स वे पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में उनकी अन्य रचनाओं का अनुवाद किया गया। ताजिकिस्तान में सन 1961 को रविंद्रनाथ टैगोर का वर्ष कहा जा सकता है। लगभग एक साल तक टैगोर की रचनाएं और उनके बारे में लेख हमारे देश में प्रकाशित होते रहे। ये इस वर्ष था कि ताजिक पाठक अपनी मूल भाषा में काबुलवाला, मोहमाया, नोटबुक, प्रतिशोध, संदेह जैसे आदि लेखक की कहानियों से परिचित हुए। हालांकि सबसे बड़ी घटना ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक जीवन सबसे प्रसिद्ध टैगोर के उपन्यास गोरा का अनुवाद था, जहां पाठक को सबसे पहले औपनिवेशिक भारत में भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक बालिदान का ताजिक भाषा में अनुवाद और प्रकाशन किया गया था। सन 2006 में टैगोर की 19 कहानियों का पहली बार हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया गया, जिनमें जाज, वन नाइट, दालिया, हेमंती, बिग सिस्टर, स्ट्रेंजर, सजा और अन्य शामिल है। अनुवाद हबीबुल्लो रजाबव, उस्मानव, रहमतुल्लोयेवा, सोलियेवा के साथ मिलकर किया गया था। इस संग्रह की प्रस्तुति दुशंबे के अलावा हमारे राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की राजकीय यात्रा के दौरान 7 अगस्त 2006 को दिल्ली शहर में भी हुई थी। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक के प्रस्तुतीकरण समारोह में उपस्थित थे। ये भारतीय प्रतिभा के प्रति आध्यात्मिक सम्मान का एक और प्रमाण है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़कर हम भारत के बारे में, इसके मेहनती और शांतिप्रिय लोगों के बारे में बहुत सी मूल्यवान और दिलचस्प जानकारी